0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Ana bersama Anda di Pesona Mandalika YAch. Ana berterima kasih untuk kebersamaannya warga. Ana langsung saja mohon undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है, मैं चांदी आला करिश्मा कपूर. अच्छा ओ गंदा आला शाहरुख़न. अच्छा अच्छा
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना
4: सोना
2: मंडलिका.